0: चेरी, तुमने अच्छी तरह पहचान लिया था वो विजय था?
1: मैंने ही नहीं बल्कि उसने भी मुझे अच्छी तरह पहचान लिया है पीके।
0: इसका मतलब ये हुआ उसे हमारा पता चल चुका है।
1: हो सकता है कसीनो में उसका आना महज एक इत्तेफाक हो।
0: नहीं शरी, लखनऊ की यह या रात याद है तुम्हें? यकीनन उसी तस्वीर के सहारे वो यहाँ तक पहुँचा है।
1: कोई बात नहीं पीके, बेटे को भी बाप के पास पहुँचा दिया जाएगा।
0: नहीं शरी, विजय के सहारे हमें उसकी माँ तक पहुँचना है, जिसे दीनानाथ ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था और विजय ने ना जाने उसे कहाँ छुपा रखा है।
2: कुछ खो गया है।

दुनिया में कौन है जो नहीं नाचता, कोई जरूरत के लिए और कोई दौलत के लिए।

कोई फूलों पे नाचता है और कोई अंगारों पे नाचता है, नौकर मालिक के इशारों पे नाचता है। बेचारा चांद रात भर सितारों पे नाचता है, कोई जमाने के लिए, कोई दिखाने के लिए और कोई यार मनाने के लिए।

0: मन्नु लेट्स गो।
1: चलो अब चले गए, प्रश्न ही उठता, मैं तो सो ही जाता।
0: अरे बाहर निकलो।
1: ये आप मुझे कहाँ ले आए?
0: ये आप बंद करो।
1: सॉरी।
0: चौकी संभालो, जगह कैसी?
1: बड़ी प्यारी जगह। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
0: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
0: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे?
0: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
0: सोच लो।
1: सोच लिया।
0: और अगर नहीं कर सकी तो?
1: हार मान जाऊंगा।
0: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
1: क्या?
0: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
1: टोकरी?
0: मंजूर।
1: मंजूर। काम तो बताइए।
0: जरा सोच तो लू। वो देखते हो वो?
1: हाँ।
0: क्या?
1: मुर्गी।
0: हाँ पकड़ लाओ।
1: मुर्गी?
0: हाँ।
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।